0: क्लास तुम कफा भी Shoto tumbuk vavi.
1: Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

0: गिलास तुमको वा भी
1: तीम ने रसोमेल तेमंदेल तबक तेमंदेल वाले फी तुम रपन चले चीरका पोकर सारे नाम ले लाभ सो ओम कॉम्प्लेक्स सो फिला आराम भी फमी सात सौ तक मीन सो याद का पोका वो तेसा भी फाउल नहीं तार भी फी तुम रपन जखा नाम सो वे हम आना ले तेले स्टार्स पची मान नाम ले वे चीरा मान तो कोई पीन पीछेसन तार